बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों।

0: Siphonia. Extreme energy drink.
1: चरक मेमोरियल हस्पिटल कर्मचारी संचय कोषद्वारा सूचीकृत अस्पताल
2: यस चरक मेमोरियल हस्पिटलमा कर्म

0: के भयो? के को हल्ला खल्ला भयो?
1: के हुनु? डोजर चलेको नि। अब त हाम्रा दुःखका दिन सकिए।
2: के सकिनु नि?